तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने, तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने। जिसनों कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पछाने, तेरे आ भक्तों को बलिहारा खान सुहावा सदा प्रभ तेरा, रंग तेरे अपारा रंग तेरे अपारा, खिन में अवर खिने में अवरा अचरज।

सिफ्त साला करन वाला, कीर्ति करन वाला, उसनू गुरु महाराज ने ढाडी का नाम दिता है। इतिहास विच पुराने ग्रंथा विच जिक्र आउंदा है कि भगवान की उस्तत करन वाला जो हर वेले अपने हत्थां दे विच वीणा लैके रखदा सी, जिसका नाम नारद करके आया है, हर वेले प्रभु की उस्तत करदा सी, कीर्तन करदा सी परमात्मा। एक वेर नारद भगवान ने प्रभु कोल एक सवाल किया, है भगवान जे तेरे दर्शन करने हो ता दस कित्थे तेरे दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि तेरे दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। प्रभु का मिलाप भावे कोई आखे के हत्था दियां हथेलियां दे विचकार दर्शन करा दें, कोई आखे त्रिकुटी चढ़ा के तेन दर्शन करा दें, कितने ही कर्मकांड करके कोई आखे के दर्शन हो जान, ये नामुमकिन है, ये पखंड है, कर्मकांड है, इंज दर्शन नहीं होंगे उसके। ओदे दर्शन भगवान नारद कहते हैं कि ऐ परमात्मा तेरे दर्शन करने होने तक कितने दर्शन करा, तो कहते हैं कि भगवान ने उस वेले कहा, ऐ भगत जे मेरे दर्शन करने हो ना मैं किसे दक्षण विच वसदा हाँ, ना किधरे पश्चिम विच वसदा हाँ, अते ना ही किसे खास स्थान ते मेरा वासा है, ना मैं मंदिर विच हाँ, ना किसे मस्जिद विच, ना किसे गुरुद्वारे विच, ना किसे गिरजे विच, जेड़ा मैनू इन्हां थावां ते लोड़दा है वो भरम विच है, जे मैनू लभना होवे तां मैं जिथे संगत प्रभु दे भगत जन बैठ के कीर्तन करदे होवन, उना दिया जिथे जुतियां पईयां होवन, उना दी जुतियां दी थां दे उत्ते उना दी चरण धूड़ दे विच मेरा स्थान। भगवान अपने भगतां दे वस है, उना दी संगत भगत जेड़े हन भावे जिथे मर्जी उसनू प्रगट कर लैन, भगत ने चाहिया तां पत्थर दे विचों भी प्रगट कर लैन, जे भगत ने चाहिया तां उस परमात्मा कोलों अपनी खेती दे विच हल भी जुताया, अपने डंगर भी उस कोलों चुगवाए, ए भगतां दी खेड है जिन्हां नूं प्रतख दर्शन हुंदे हन उस वाहगुरु दे। परमात्मा ने कहा है, ए नारद मेरा घर मेरा स्थान साध संगत दे विचकार है, उस तो सिवा मेरा कोई स्थान नहीं। जिहड़े उस्तत करदे हन, सिफत सालाह करदे हन, इक मन होके जपदे हन, कीर्ति दे विच जुड़े होए हन, निष्कपट होके, निर्छल होके, निस्वार्थ होके जिहड़े कीर्ति करदे हन प्रभु दी, उन्हां नूं मैं परतक अंतस्करण रूप विच अंतर आत्मिक दर्शन दिंदा हां, उत्थे मेरे दर्शन हुंदे हन। और भगत नारद इतना प्रभु का निकटवर्ती सी, प्रभु की प्रसन्नता से उस भगत नारद उत्ते, क्योंकि वह कीर्ति करने वाला सी। तो गुरु महाराज ने गुरबाणी दे विच कीर्ति करने वाले नू, कीर्तन करने वाले नू, सिफत सालाह करने वाले नू ढाडी का नाम दिता है। आखते ने गुरु पातशाह

की प्रयोजन लेके आया है। अगू गुरु पातशाह जी ने एक सवाल किया, एक मंग की थी।

ऐसा सवाल लेके इक वेर गुरु नानक भी अपने करता पुरख वाहिगुरु दे उस पवित्र स्थान ते पहुंचे सन। लोकां ते भावें उस वेले समझिया सी कि गुरु नानक वेई नदी दे विच इशनान करन दे बहाने डुब के मर गया, क्योंकि मोदी खाने का हिसाब तेरा तेरा करके लुटा दिता। ते जदों हिसाब मंगिया गया होवेगा उस वेले बहुत सारा घाटा जिस वेले नजर पिया होवेगा, तां गुरु नानक वेई नदी विच डुब के मर गया। ऐसी ना समझ लोकां दे ख्याल जिन्हां ने कदे गुरु नानक नूं पछाणिया तक नहीं, लेकिन जिन्हां ने पछाणिया जिन्हां ने गुरु नानक नूं जाता, बेबे नानकी कहिंदी है मेरा गुरु नानक जेड़ा डुबिया नूं तारनहार है वो आप किवें डुब सकता है, उहदा इको ही कौतक है। और सचमुच जदों तीसरे दिन फिर गुरु नानक प्रगट होए और उस वेले संसार दे सामने एक ऐसा पैगाम लेके आए

करता पुरख वाहिगुरु दे देश। बस यही मंग कीती ऐ वाहिगुरु, संसार सड़ रहे है, एदी ए हालत होई है।

कोई ऐसी वस्तु दे जिसनू मैं संसार दे पुले पटके लोकां नू जाके वरता सकां। अरदास करते हैं

आए जदों आनंदपुर साहब दरबार विच नहीं गए, उत्थे आए जिथे धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दा सोहना बाग सी, ते बाग दी सेवा कर रहा है भाई केसरा सिंह, आके चरणा विच बेनती की, भाई साहब कृपा करो सानू ऐसा मार्ग दसो कि साढ़े कोल एक सिख दी हत्या हो गई है, जो पानी मंगदा मंगदा चलिया गया, असी उदे मूंह विच घुट पानी दा ना पाया, ते हुण असी ए अपने सिर ते पिया होया गुनाह साडा कीता होया पाप किवें बख्शिया जावे, ते सानू धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे दर्शन होण। भाई केसरा सिंह ने आख्या तुसी इसे बाग दी सेवा करो, समा आएगा तुहानू धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे दर्शन भी होणगे। भाई केसरा सिंह रोज अमृत वेले आ फुलां दी सोहना एक सेरा बना के लै जांदा सी, ओ सेरा माता जीतो जी जदों धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दरबार विच आउंदे सन तां उन्हां दे गल विच पाया करदे सन, ओ सेरा अज सोइना बोइना ने अपने आंसुआं दे नाल परोया तैयार कीता, आख्या भाई केसरा सिंह लै जा साडी बेनती, ते पातशाह नूं कहीं साडे वास्ते की हुक्म है। जदों भाई केसरा सिंह सेरा लै के आया, ऐसे प्यार नाल गुद्दिया होया सेरा, जिसके एक एक फुल ते सोइना मोइना ने पता नहीं कितने कितने अथरू डेगे हैं। जदों माता जीतो जी नूं लिया दिता, जो धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह दे सुपत्नी सन, लो माता जी, माता जी कहन लगे भाई केसरा सिंह अज बड़े प्यार नाल सेरा गुद्याई, एडा सोहना सेरा, आख्या ये मैं नहीं गुद्या, ये कोई दो सोइना ते मोइना दनपति आए हैं, ये उन्हां गुद्दे, ताही ये धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आ गए। माता जीतो जी ने सेरा साहब जी दे गल विच जदों पाया, अंतर जामी धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहन लगे भाई केसरा सिंह आ बेशक उन्हां नूं जाके कह दे सोइना मोइना नूं बाग दी सेवा जरूर करन, लेकिन जदों असी बाग विच आईए तां साडे मत्थे ना लगन। साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु, क्योंकि साडे सिख ने वचन कीता है कि तुहानू ठाकुर दर्शन नहीं देणगे। वापस आया भाई केसरा सिंह, मन बड़ा उदास है, सोइना मोइना समझ गए कि अजे हुक्म नहीं मिले, रोज नाम जपते हैं सेवा करते हैं। एक दिन रात का समय दोनों अपनी झुग्गी विच बैठे शब्द गा रहे हैं, मन बैराग भया दर्शन देखने का चाव, ताई बुआ खड़किया, बुआ खोलिया की वेख्या, माता जीतो जी खड़ोते, आख्या मेरे बच्चियो फिक्र ना करो, जिस प्यार नाल तुसी गुरु घर की सेवा कर रहे हो, नाम जप रहे हो, एक दिन ओ जरूर आवेगा, मेरा मन कहिंदा है जदों तुहानू कलगीधर पातशाह दे दर्शन होणगे। साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु। पौ सतवीं दा दिन नेड़े नेड़े आ रहे है, धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दा अवतार पुरब, ते सोइना मोइना ने सोहने फुल तैयार कीते के जाके साहब जी दे चरणा विच भेटा करके गुलदस्ता बना के सोना भेजांगे। एक दिन विच रह गई, अगले दिन पो सतवीं दा दिन सी धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे आगमन दा, प्रकाश उत्सव दा, ताई रात एक रोड़ा जलाली करके फकीर आया, उसने सारी क्यारियां विचों फुल तोड़ के ले जाण लगा, सोइना मोइना ने जदों ए वेख्या ते चरण पकड़ ले, आख्या ए फुल तेरे वास्ते ने, ए फुल असी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह वास्ते सजा के रखे, तां ओ कहण लगा जे मैनू फुल ना दोगे तां मैं तुहानू श्राप दे के जावांगा। कंब गए, गश खा के दोनों डिग पए, सर्दियां दी रुत है, दोनों दी लोथां बाग विच पईयां। जदों सवेरे रोड़ा जलाली फकीर फुलां लै के गुलदस्ता बना के धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे चरणा विच पहुंचिया, अज पौ सतवीं दा दिन है, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा जन्म दिन,
सारे पेटावां लिया रहे। जदों रोड़ा जलाली ने पुल रखे अगे तां धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तरबक के उठ पए। आख्या ओ रोड़ा जलाली, तू रोड़ा जलाली नहीं, तू रोड़ा पलाली है। तू ए फुल नहीं तोड़ के लियाया बाग विचों, गुरु नानक दे चरणों विचों दो रूहां नूं तोड़ के लियाया। साहब जी उठे आए उस थां ते जिथे सोयना ते मोयना बेसुरत होके पैन दोनों दी लोथां पईआं। साहब जी दे नाल सारियां संगतां बाग विच आ गईआं। साहब जी उत्थे ही धरती ते बह गए, एक गोडे ते सोना सोयनिआं दा सिर रखिआ, एक गोडे ते मोयना दा। भाई दया सिंह जी पातशाह जल लियाओ, जल दे छट्टे दिते। दोनों ने नेत्र खोले, की वेखिआ, साडा सिर धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दी गोद विच है। साथ संगत बोलो श्री आख्या सुपना है के सच। साहब जी कहन लगे सच है, अज तुहाडे प्यार दे सदके मेरे सिख ने भी तुहानू बख्शिया और मैं भी तुहानू बख्शिया। आओ अज असी अपना ए पोह सतवीं दा पुरब तुहाडी झुग्गी विच ही मनावांगे। झुग्गी विच लै गए, साहब जी बह गए, सारियां संगतां उत्थे ही आ गईयां। साहब जी ने आख्या ओ एडे प्यार नाल सानू याद करदे सो, शब्द सुणांदे सो, हुण असी आए हां, हुण भी तां सुणाओ। दोनों ने फिर वह शब्द गाव्या। अज मन दियां लोचावां पूरन हो गईयां क्योंकि धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे प्रतख दर्शन हो रहे। साथ सगत बोलो श्री वाहे। आ एडा प्यार किते साडे मन विच भी आ जावे, साडा भी मन और रसना एक हो के ए अखर आखे, तां फिर गुरु दूर नहीं है। बुलिया साई ते तो वख ना, फर्क भी विचों कख ना, पर वेखण वाली अख ना। आओ करिए बेनती, मन हिरदा और रसना एक होके ए पुकारे की। आओ

के बादशाह पिट हो रही है हुण इत्थों दी मैनू माफी दे दे। ते आपने फिर जाना ब्यासा नदी तो जल दी गागर भरनी सिर ते चुकनी ते फिर सत्कार दे नाल मन विच भावना लिया के आके गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी इशनान दी सेवा करनी। ते जदों साल बीत जा

खुंजाया जो सेवा तो बिना चला गया। आज 12 साल का आखिरी दिन है, आज एडा चखड़ चल रहा है, एडा मीह पै रहा है कि रस्ता नजर नहीं आता। आप पुठी प्यारी तुरते हुए अधे

गुरु पातशाह इत्थों हुण पिट्ठ हो रही है, माफी दे देना। ते फिर व्यासा वल तुर पए, गागर जल्दी भरी सिर ते चुकिया। अज एडा मीह पै रहा है, जखड़ चुल रहे हैं,

ख्याल रख तेरी सेवा और तेरे नित नेम विच फर्क ना पवे ता बख्शीशा दा हकदार होवेगा। गुरु रामदास सच्चे पातशाह इस शब्द विच बख्शिश कर रहे हैं।

साहिब जादे सूबे दे सिपाहियां नाल ठंडे बुर्ज विच माता जी पास परत आए। माता गुजरी जी पोतियां कोलों इस तरह हाल पुछदे हैं।

ज्योतिष विद्या कदे गलत नहीं हुई। मेरे हिसाब नाल ए बालक दुनियावी बालक नहीं, ए तां परमात्मा दा रूप है। सात सगत बोलो श्री, ए प्रभु दा रूप है। मैं तां कालू ने खुश होके पंडित हरदयाल नूं इनाम वजों धन दिता और प्रसन्न होके घर आया। हुण चारे पासे माता तृप्ता नूं मैं तां कालू नूं वधाइयां मिल रहियां हन। अज बालक ओ बालक पैदा होया है जिस

है ना ओ मैं जप रहा हूं। गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक ओसी भी सच। हे निरंकार तू आद विच भी सच सै जुगाद विच भी सच सै हुण भी सच है

कर्म कीते हुए सारे निष्फल चले जाते हैं। जिमें कि 68 तीर्थां दा इशनान, परोपकारी जीवन बतीत करना, बहुत सारा दान पुन करना, बहुत प्रसाद करावे, पाठ करावे, पर जे निंदा हो गई वह भी किसी महापुरख की, ते कोई भी कीता होया कर्म फलीभूत नहीं हुंदा। जेड़ा मनुख इस भयंकर रोग विच फसे है,

गुरु अर्जन देव जी अपने शब्द विच फरमान कर देंगे। निंदक दी ए निशानी है, जदों किसी का भला हुंदा होया वेखेगा ते दुखी होएगा, ते जदों किसी का बुरा हुंदा वेखेगा उदों प्रसन्नता विच आंदे, खुशी विच आंदे। वड्डी निशानी निंदक दी ए वे, हजूर कहंदे ने

महाराज कहंदे ने तपदा सड़दा वेखिया संसार, किसे नूं चैन नहीं किसे नूं शांति नहीं। इस करके जीवन पद निर्वाण इको सिमरिए, ना सिमरिए तां टिठा सब संसार, दो सुख ना नाम बिन, क्योंकि दूजी ना ही जाए किन बिद धीरिए, होर कोई तरीका ही नहीं धीरज आउण दा शांति आउण दा। ते भी दसदे ने कि नाम ना जपिया जीवन एवें तुर जाएगा, तन तन होसी चार जाने कोए जाने, ते जेड़े पासे लगा है रंग रूप रस बाद के करें प्राणियां, ते जेड़ा भुलिया रह गया इस पासे उनु शांति नहीं, जिस भुलाए आप तिस कल नहीं जानियां। भागा वाले ने रंग रते निर्वाण सच्चा गा वही, ते कहंदे ने मैं ता आप तेरी शरण हां, नानक शरण द्वार जे तुद भावे सच्चे पातशाह, तेनू जे चंगा लग जाए ते मैं ता आप तेरे दर तो यही मंगदा हां, कर कृपा मुझ साध संग दीजे। इस तरीके नाल ही कुछ मिल सकन वाला।

जल बिन साख कुमलावती, उपजे नाही दाम, हर नहा ना मिलिए साजने, कत पाए विश्राम। जित कर हर कंत ना प्रगटी, पाठ नगर से ग्राम। सर्व सिगार तंबोल रस, सन देही सब खाम। प्रभ स्वामी कंत विहूणिया, मीत सज्जन सब जाम। नानक की बेनंतिया, कर कृपा दीजे नाम। हर मेलो स्वामी।

हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो हो। पुत्र कलत्र ना संग तना हर अविनाशी ओह। पलच पलच सगली मोई झूठे तंदे मोह। इकस हर के नाम बिन अगे लिए खोए। दया विसार विगुचना प्रभ बिन अवर न को।

हर जेठ रंगीला तिस्तनी जिसके पाग मथन आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाह न जिन्ना पास आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाह न जिन्ना पास जग जीवन पुर

मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ाव्या दिसन सबे छार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तिण प्रभ संग मौलिया सम

तू बेअंत को विरला जाने को विरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा नाना रूप तरी बहुरंगी सब तेरे न्यारे तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत

0: You're listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.
1: माता जी दा कोरा जवाब सुन के जलाद परत आया, कंध मुकम्मल तैयार हो गई, साहिबजादे असह ते अकह कष्ट सहार दे होए शहीदी पा गए, धरती कंब उठी, आसमान डोल गया।

नदेड़ दी धरती हजूर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का दरबार। क्यों बई आज इस दरबार विच सोग क्यों छाया है? संगतां नीवी पा के बैठियां ने, अखां विचों हंजू केरी जांदियां ने, की गल? गुरु गोविंद सिंह महाराज की आख रहे ने? अज सानू शरीर करके सदा वास्ते बछोड़ा दे रहे ना महाराज, इंज ना करना। असी तुहाडे दर्शन कर करके जिउंदे हां, तको संगतां वल किवें हंझुआं दा मीह वरसा रहीआं ना महाराज, असीं इह विछोड़ा सहार नहीं सकांगे। संगतां दा वैराग देख के गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करवाया, पंजा सिंघां नूं तैयार करके गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच खलारिया। आप गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां परिक्रमा कीतियां, पंज पैसे ते नारियल लै के गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे नमस्कार कीती। सिंघो, अज मैं तुहानू गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ ला के चलिया, अज तो बाद देहधारी गुरु नहीं होएगा, बाणी गुरु गुरु है बाणी। आत्मा ग्रंथ विच, शरीर पंथ विच, जिन्हें मेरे शरीर करके दर्शन करने होण, मेरे खालसे का दर्शन करे, जिन्हें मेरे नाल बचन करने हो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी प्यार नाल पढ़े, मेरा खालसा हमेशा गरीबां ते मजलूमां दी खातर जूझदा रहेगा। ये अपना धर्म भी बचाएगा, दूजिया का धर्म भी रखेगा। हमेशा ही गरीबां ते मजलूमां दी खातर जूझेगा, सरबत दा भला करेगा। अज ये वचन आख के गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने हुक्म कर दिता, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। आज्ञा पई अकाल की, तबे चलायो पंथ। अब्दाली ने वार वार हिंदुस्तान पे हमला किया, हमला करता है, लुट मचा के चला जाता है, तबाही कर जाता है। तैनू कोई रोकने वाला नहीं? हां भाई, हुण तू हिंदुस्तान विच तबाही नहीं मचा सकता, क्योंकि सानू गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जदों गुरु दे लड़ लाया, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का लड़ पकड़ाया ते समझाया सी, सरबत का भला करना है, दूजियां का धर्म बचाना है। आ एक दिन फिर चौथी वार अब्दाली ने हिंदुस्तान ते हमला किया है, आगरा ते मथुरा शहरां दे विच इहदे सिपाहियां ने लुट मचा दी, मंदरां विच्चों कीमती जेवर चुरा लए, किड्डा पापी है, भगवान दियां मूर्तियां तो भी मुक्त लाई जांदा है, होर भी घोर पाप करदा है, घरां विच्चों कीमती समान भी लुट लिया, ते नौजवान बहु बीबियां नूं भी बेटियां नूं भी पकड़ के गड्डियां विच बिठा के इहदे सिपाही लै चले। सत्संगियो, बीबियां ने हाल दुआई मचाई है,
ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਕੜੇ ਵਧੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਾਵਲਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਪਰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਜਾ ਮਾਰਕੰਡਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੋ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੱਕਿਆ, ਬਈ ਆਹ ਗੱਡੇ ਤੇ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਗੱਡੇ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਲ ਦੁਆਈ ਮਚਾਈ, ਓਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਟੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਬਚਾ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਟੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲਾਜ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਕੜੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਿਆ ਤੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

पादशाह तो सवाल कीते, पादशाह तुसी अपनी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज क्यों नहीं कीती? कहन लगे फर्क है, उत्थे रब दी कथा है, इत्थे मैं अपनी कथा कह बैठा, इसलिए अपनी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज नहीं की। पातशाह तुहानू की लोड़ पै गई अपनी कथा सुनाण दी? कहन लगे लोड़ सी, जिस वेले तुलसीदास किसे प्यार विच आया, श्री राम नू भगवान राम कह बैठा, सूरदास बहुत ही सत्कार विच आ गया, ते कृष्ण नू भगवान बना बैठा, कोई ऐसा सिख उठ के मैनू भगवान ना कह बैठे, वाहगुरु ना कह बैठे, इसलिए मैनू अपनी कथा कहनी पै रही। पर जे पातशाह तुहाडे गुणां नू, तुहाडी महिमा नू वेख के कोई कह बैठे भई तू ते रब इको ही हो, तू ही रब है, ते फिर की होवेगा? हजूर ने वचन कीता

बादशाह कहण वाले कह छड़दे ने भाई गुरु गोबिंद सिंह जी ने अवतारा उन्हें बड़ा खंडन कर दिते कि उन्होंने दिल विच कोई भेद सी फर्क सी। बादशाह कहण लगे नहीं मेरा किसे नाल वैर नहीं, मैनू जिवें वाहगुरु ने गल्लां आखियां ओ मैं संसार नूं दस रहा। दूजी गल उन्हां तों विछोड़ के जे मैं आखां मेरे पैरां दी पूजा करो तां ते मैं भुल विच हां। मैं कहिंदा भई नहीं ओ वी दस रहे ने मैं वी दस रहा, उस वाहगुरु दे तुसी वी सेवक बनो, इसलिए मेरा किसे नाल वैर नहीं। हजूर कहिंदे ने

दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख शक्तवार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन ताए वैद ना भोले दारू लाए। साहबा ने दुख गिने ने बंदे दे, बंदे नालों बंदा विछड़ जावे ते दुखी हो जाता। जिथे मोह बनिया हो, प्यो पुत्र विछड़ जान, भरा भरा विछड़ जान, मां पुत्र विछड़ जान, मावां धीआं विछड़ जान, दुख वापरदा। मगर साहब का इशारा होर पासे कर दे, कहिंदे ने वाहगुरू नाल विछड़िया बंदा किन्ना दुखी। दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक नित दी भुख, राती सुते खा के दिने फेर खली। हर वेले मनुख दे अंदर नहीं उस भुख की गल नहीं जिहड़ी रोटी की लगती, एक होर भुख की गल बाबा जी कहिंदे ने जिहनूं तृष्णा कहिंदे आप, मिटण विच ही नहीं आउंदी। सब कुछ हुंदिया सुनिया भुख कायम है, खा पी के भुख कायम है, उस भुख ने बहुता दुखी कीता। रोटी की भुख बंदे ने जर ली होवेगी, लेकिन तृष्णा च बंदा बड़ा दुखी हो। एक दुख शक्तवार जमदूत, एक वड्डा दुख बंदे वास्ते मौत तो बाद की बनेगा, लेखा किवें देवांगे, सुरखरू किवें होवांगे। चौथी थां ते महाराज कहिंदे ने एक दुख रोग लगे तन तहाए, आ कदे कदे शरीर ते भी दुख आ जांदा। तू किथे किथे दवाई लावेगा, किस किस दुख दा दारू करेगा, पर जदों गुरु दी रहमत हो जावे ना सारे ही दुख दूर हो जांदे। दुख बिन से पूर्ण पई खाल, कदों जदों गुरु की बख्शिश हो जावे, रहमत हो जावे, सतगुरु दयाल हो जान, ये गल वखरी है सत्संग। इस तो कुछ साहबा ने कहा ना, गुर पूरे जब भय दयाल। ऐसा मतलब नहीं समझना कि जदों कदे महाराज दयाल होणगे तां किते गल वापरेगी, सतगुरु सदा दयाल है भाई। गल इन्नी है कि उहदी दया दा पात्र बनन वास्ते मैं कोई यतन कीता है कि नहीं, मैं निम्रता नाल उहदे चरणां ते मत्था टेकिया कि नहीं, मैं उहदी रहमत वास्ते झोली फैलाई है कि नहीं। जद भी मैं उहदी दया दा पात्र बनन वास्ते निम्रता सहित झोली फैलाई, मत्था टेकिया है, रहमत अवश्य होई, और उस रहमत दे नाल मेरे दुख दूर होए ने। इन्हां नूं दुख किया है, ते इन्हां दुखां दे पिछे जो इन्हां दे कारण ने उन्हूं दोख भी किया है। दोख कहिंदे ने दोष नूं, गुनाह करिए ते दुख पले पैंदा। ते पावन बाणी च तोका हुंदी है ना, मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, इन्हां नूं एक एक दोष है। मृग नूं कन्ना दा दोष है, सुनन दा कुत्ता शौक है इसनूं, कंडे हेड़े दी आवाज च फस के मारिया ते फड़िया जांदा। मच्छी नूं जीवा दे स्वाद दा रोग है, दोष है। जेवा सादी लीलत लोह, स्वाद दी मारी होई, बाहरों आया गडोआ या बाहरों आया जो कुछ भी मसाला लगा है कुंडी दे नाल उहनूं निकल लैंदी है, कुंडी निकल लैंदी है, फस जांदी है। भृंग नूं भंवरे नूं सुगंधी दी तीबर इच्छा ने रोगी बना रखे, पतंगे नूं नेत्रां दी भुख ने, अखां दी भुख ने, रोशनी वेख के बावरा हो जांदा है। हाथी नूं काम दा रोग है, मगर महाराज तां कहिंदे ने बंदे दा की हाल होवेगा। पंच दोख असाध जामै तांकी केत कास, बंदे नूं तां पंजे ही चंबड़े ने। इह कन्नां तों भी कमला, इह नासां तों भी कमला, अखां तों भी कमला, जीवा तों भी कमला, इंद्रियां सारियां तों कमला, काम तों भी कमला, इहदा की हाल होवेगा। सतगुरु जिस दिन कृपा करदे ने ना, उस दिन इन्हां दोषां तों बचाउंदे ने। बंदा जिस दिन दोख तों बच जांदा है, दोष तों बच जांदा है, उस दिन दुख तों भी बच जांदा है, क्योंकि दोष तों ही, दोख तों ही दुख पैदा होंदा है। दोष नहीं रहा, दोख नहीं रहा, तो दुख भी नहीं रहेगा। गुर पूरे जब पहे दयाल, दुख बिन से पूरन पही कहार। हुण सतगुरु ते रहमत कर दित्ती, मैं की करां, मैनू की करना चाहिए। साहिबां ने साडे वल संकेत किया कि हुण तू अपना फर्ज पछाण। गुरु ने तैनू दोषां दे चिक्कड़ विचों कढ के दुखां तों बचाया, तैनू की करना चाहिए। उह संकल्प महाराज ने बख्शे है, पेख पेख जीवां दर्श तुम्हारा, सतगुरु जुड़िया रवां तेरे नाल।
चरण कमल जाई बलिहारा तेरे चरणा तो वारने बलिहारने जांदा रवा तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा अज तेथो विछड़ गए मुड़के दोष आ गए मुड़के दुख आ जाणगे तेरे बिना कौन है जो बचाई रखे दोषां तो ते दुखां तो साध संगत से उपरीत बन आई पूर्व कर्म लिखत तुर पाई एवी तेरी रहमत जप हर हर नाम अचरज प्रताप भगती च लग के ऐसी सोहनी गल बनी है ऐसा आश्चर्य प्रभाव वाला काम होया प्रताप वाला काम होया कि जाल ना साके तीने ताप हुण आद ब्याद उपाद वापर नहीं सकते हुण ता मेरे ते रहमत करो मेरे सतगुरु निमुख ना विसरे हर चरण तुम्हारे तुहाडे चरणा कमलां तो एक पल वास्ते भी ओझल ना होवां ओले ना होवां भुल ना जावां तुहानू नानक मांगे दान प्यारे मैं ते ही दान मंगदा निमुख ना विसरे हर चरण तुम्हारे बंदा एक चादर दी बुकल मारी तुरिया जा रहा सी सिखा ने वेखिया कहन लगे महाराज कोई सुइया जापदा है कोई खुफिया जापदा है जासूस लगदा है जेड़ा किले दे नेड़ियों लंघिया जांदा है मूह सिर छुपा के तुरिया जांदा है बुकल कैसी मारी सू पुछे बंदा तू ऐसे बड़ी ठंड वापरन डई ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਕਣ ਮਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁੱਝੇ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਔਰ ਸੂਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਫਿਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫੜ ਲਓ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਫੜ ਲਿਆ ਰੋਂਦਾ ਧੋਂਦਾ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਬਾਹਾਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ तरले मारदा गुरु के हाजिर किया गया साहब कलगीधर पातशाह कहन लगे कौन है तू मूह नंगा करके कहन लगा पातशाह तुहाडी शोभा महिमा सुनी मैनू गरीब नू कोई नहीं जानदा मगर गरीब नवाज तुहानू सारे जानदे ने मैं भी जानदा जो कोई तुहाडे बारे सुने है मैं बेनती करांगा मैनू खिमा कर दियो कौन है तू कहन लगा जी पठान पुत्र हां ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸਾ ਇਧਰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਐਵੇਂ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਚਾਦਰ ਖੁਲਾਓ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛੋ ਇਹਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਢੱਕਿਆ ਰਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਦਾ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋ ਏਕ ਕਰੇ ਚੰਗਿਆਈ ਮਨ ਚਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵਫਾਵੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨੇਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਗਹਿਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨੇ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਰਲਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਪਰਦੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਪਰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੋਈ ਜਾਨੀ ਪਰਦਾ ਕੱਜਣ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਇਹਦਾ ਖੇਸ ਇਹਦੀ ਚਾਦਰ ਲਾ ਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਦਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਬਗਲ ਚ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਰੀਲ ਜਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਈ ਮਰ ਰਿਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਪਰਦਾ ਸੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸਾ ਦੇਸੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੇ ਐਸੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਡਾਕੂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਠਾਨ ਨੂੰ
रोटी खादियां कई चिर हो गया है, मंगना मेरी शान दे खिलाफ है। कैसी प्यारी गल है, जिसले साखी पढ़ने हैं पठान कहता है मंगना पठान की शान दे खिलाफ है। सिख वास्ते भी एवे पावन बाणी कहती है, लोक तिकार कहे मंगत जन मांगत मान ना पाया। मंगण वाले का कोई मान नहीं, तरकारा तो मिल सकदियां ने, मान नहीं मिल सकता। इसे करके गुरु का सिख मंग के नहीं खादा करके खाता, मान नाल छांदा, दरकार नाल नहीं खाण नूं तैयार। कहिंदा जी पठान पुत्रा मंगण जोगा भी नहीं, भुखां दा मारिया लुटन जोगा भी तां नहीं, मेहनत मजदूरी भी कोई नहीं मिलती। कई दिन का भुखा दा मारिया, अज मैं ये फैसला कर रहा भी जो मिल गया खा लेना, ते मरिए जा कुत्ता मेरे काबू आ गया। मैं सोचता सा कितने नुकरे बह के इसे नू चब लवा, इसे नू भुन के जिवे भी होवे इस नू खा लवा, ते अपने पेट की अग बुझा लवा। साहब कहन लगे नू लंगर छकाओ, सोने बस्तर पुआओ। कहन लगा महाराज मैं तुहाडा दुश्मन हो सकना, दोखी हो सकना, लंगर छका दियो तुहाडी बड़ी कृपा है, क्योंकि तुहाडे दर ते तां न्याय वापरदा है। साहब कह लगे तू इत्थे ही रहेगा। कह लगा महाराज सारे मैनू शक दी निगाह नाल वेखणगे। साहब कलगी तर पातशाह हस पै, कह लगे नहीं इत्थे भाई कन्हैये वर्गे बेअंत ने, जिहड़े किसे नू दुश्मन नहीं समझदे, किसे नू वैरी नहीं जानदे, तू इत्थे रहेगा। आम उन्हां समयां च टकियां च रजीने मिलदे सन, साहबां ने रुपया रोज दा ला दिता। कह लगे इहनू गुजरान मात्र रुपया रोज दा दिओ। कह लगा साहब जी किस गल दा, तुसीं इह रुपया रोज मैनू किस गल दा बख्शदे। साहब कहण लगे भुखां दा मारे हैं, गरीबी दा मारे हैं, देशों परदेश आया कमाउण वास्ते, तेरे बाल बच्चियां वास्ते, तेरी किरत मात्र, कि महाराज मैं करांगा की। साहब कहण लगे जो तेरा जी करदा है, इत्थों कुछ होवे तेरा शरीर जरे ते कर लई, ना कीता जावे तां वी कोई डर नहीं। गद गद हो गया, गुरु की रहमतां पा के फिर डेरा नहीं छड्डिया, गुरु का डर नहीं छड्डिया, सेवा च लग गया। इतनी सेवा कीती गुरु के सिखां दे नाल, जूझदा ही शहीद हो गया, गुरु के चरण नहीं छड्डे। कई बारी सिखां ने कहा हुण तां तकड़ा हो गया, पैसे भी हो गए, हुण तां निकल जाए इत्थों, तेरी जात बिरादरी वालियां ने तेरे बंदियां ने वेख लिया तैनूं काफिर कहणगे, तैनूं दोषी करार देणगे। ओह कहिंदा नहीं, दोष निकल गए जीवन विचों, जिसने खुदा नाल जोड़े है, इन्ना पर उपकार ते इन्नी समदृष्टि बख्शिश कीती है, जे उहने मेरे नाल वैर नहीं कमाया, उहदियां ने मेरे नाल वैर नहीं कमाया, ते मैं इहनूं छड्ड के होर किहदे कोल चला जावां, इहदे चरणां दे विच बाकी दी जिंदगी बतीत होवे। इह सच जानना इक पठान दी गल नहीं, साडे किन्ने ही दुख, उहदी इक भुख दा दुख महाराज ने दूर कीता ते हमेशा वास्ते विक गया गुरु चरणां तों, साडे किन्ने दुख सतगुरु दूर कर दे। गुरु के सिख दा की फर्ज बनदा, ओ सदा यह गल हिरदे च धारण करके रवे कि साहब तेरे दर तों सरदारियां पाईयां ने, भुखां मिटियां ने, मान मिलिया है, भरम मिटे ने, दूई मिटी है, हिरदे नूं शांति प्राप्त होई, बड़े सुख पाए ने। मेरे ते तेरी रहमत होवे ते इह होवे कि मैं तेरे नाल जुड़िया जुड़िया अपना जीवन सफला कर जा। आपां हुणे शब्द पढ़िया सी ना, डिगन डोला तऊ लो जो मन के भरमा, बंदा डिगदा डोलदा ते डगमगाउंदा सिर्फ उन्ना चिर है जिन्ना चिर मन च भरम ने, दुई भाव है। जिसले हिरदे विचों दोष निकल जान, भरम निकल जान, बंदे नूं चैन आ जांदा। मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा, गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा, जब लग हुक्म ना बूझता तब ही लो दुखिया, गुर मिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया।

लक्षण बदल गए, सुलक्षणे हो गए, शुभ लक्षण हो गए। लक्षण कहिंदे ने जो कुछ नजर आउंदा। मनुख दी अंदर दी रहनी जिस वेले बाहर आ जांदी है लक्षण कहाउंदी। सतगुरु क्योंकि मनुख दी रहनी सुधार देंदे ने, इस करके जबान मिठी हो गई लक्षण चंगा है, चाल ठीक हो गई करते पुरख ताल दिवाया, जिंदगी ताल विच आ गई, बेताली जिंदगी ताल विच आ गई। चाल ठीक हो गई और एक कहने लक्षण जेड़े ने रफ्तार दस्तार गुफ्तार यही तो गल्लां होंदियां ने जिन्हां तो बंदा पछाणिया जांदा। पग किहो जी बनदा भाव इस नूं अपने सजन सजाउण दा ख्याल भी है कि नहीं। और यही वजह है कि लोग तां कहिंदे ने पग बननी है, लेकिन गुरु का सिख कहिंदा दस्तार सजाउणी है, क्योंकि उन्हूं बड़ा ख्याल है कि मेरे सजन दा सवाल है, मैं सजिया सजाया गया ते सज के रहना मेरा काम। दस्तार तो पता लगता है इस बंदे दी रहनी बहनी की है, भाव वस्त्र पाउण तो रहनी बहनी तो मनुख दे अंदर दी सफाई दा ते अपने आप नूं बना के रखण दी रुचि दा पता लगदा, चाल तो पता लगदा है इहनूं तुरना आउंदा है, चाल तो ही चाल चलण दा भी पता लगदा, ते गुफ्तार तो जबान तो बोलण तो भी पता लगदा है इस दे अंदर की है। जो जीए होए सो उगवै, जबान तो ही निकलेगा जो अंदर है, अंदर बाणी है ते मुंह बाणी निकलेगी, अंदर प्यार है ते मुंह प्यार निकलेगा, अंदर नफरत है ते मुंह गाला निकलेगी। सतगुरु की कृपा दे नाल मनुख दे लक्षण बदलते, पर उदों बदलते जदों गुरु के मार्ग पै जाते।

फिर पंजाब दे मेरा सी उन्हें अरदास सुनी सुनाई याद सी सारी कर छड़ी ते अखीर ते कहिंदा सच्चे पातशाह कलगियां वाले आ ऐसे ने तेरिया फौजा ते टिड्डी दल हमलावर हो रहे हैं जूझण की समर्था बख्शिश करो कहिंदा ए की हुंदा है जूझना की हुंदा है कहिंदा ए नहीं कहिंदे भी सानू मैदान विच फतेह दे एक कहिंदे ने मैं लड़ सकी है चज नाल जूझण दा मतलब है लड़ना जान ला के लड़ना ये हुण जान ला के लड़नगे ते फिर उस तो बाद वाहगुरु जी का खालसा ते वाहगुरु जी की फतेह और उस तो उपरंत जकारा गजा के तलवारां सूत लईयां उन्हें चिर नूं 200 बंदा सराहणे आ गया ये जकारे गजा के अगों पै गए और हैरान हो गया वेखण वाला सारा मुलखिया कट्ठा होया सी जिहड़ा कट्टा वड शुरू हो गई बंदे मरने शुरू हो गए जिस सालार ने जिस फौजी सरदार ने 200 बंदे लैके इन्हां ते नकली हमला कीता सी परेशान हो गया बंदे मारे जा रहे उन्हें घेरे च लैके इन्हां नूं फड़न की कोशिश की पर सामे नहीं जाते अखीर इन्होंने भी कुछ बंदे मारे गए मराशी भी कुछ मारे गए कुछ फड़े गए फटन हो जख्मी होए फड़े गए वो बुढ़े मराशी दिया मुश्कां फड़ के खान बहादुर जकरिया खान ने पेश किया कह लगा देखो हजूर इसने साढ़े किन्ने बंदे मार दिते और अपने भी किन्ने बंदे मरवा ले जकरिया खान उस मराशी दी अखां नाल अखां मिला सके लाल सूए नेत्र चेहरा पखदा कह लगा ये मराशी तो जापदा ही नहीं ए मूह ते छट्टे मारो पानी दे इन होया की है पानी दे छट्टे मारे उन्हें अखा चपकिया इधर उधर वेखिया पिछे अपने ही भरा भतीजे मरे पै वेखे कहिंदा ए की हो गया कह लगा ए तू पुछना की हो गया सारा कुछ तू ते तेरे बंदियां दा कीता इनी फौज का नुकसान किया कह लगा हजूर माई बाप मैं किस तरह नुकसान कर सकता कह लगा सारी दुनिया वेखदी ये सारा नुकसान तू किया सोचिया मराशी ने सोचिया ते सोच के कहन लगा हजूर मेरा गुनाह कोई नहीं कहिंदा क्यों किदा गुनाह है कहन लगा तुसा नकल करन नूं किया सी असी नकल करदे रहे उपर जिस वेले दुआ करन लगे ना अरदासा करन लगे अरदासा करदियां करदियां पता नहीं मेरी मत नूं की हो गया फिर कोई सिख ही वड़ गया मेरे दिमाग में किसी सिख की रूह मेरे शरीर च हलूल कर गई है फिर मैनू नहीं पता उस तों बाद की होया वो जिहड़ी फतेह ते जकारा सी उस लई गजाया गया कहिंदे अरदासा असली हो गया कि मैनू नहीं पता लगा फिर मुड़के की होए अहमद शाह अब्दाली खड़ा हो गया घबरा के खड़ा हो कह लगा जिस कौम की नकल ऐसी भयानक है वो असल कैसी हो गई जकरिया खां तकड़े हो जाओ ये कौम हकूमत करेगी तुसी रोक नहीं सको ये राज करेगी तुसी रोक ना सको जिसकी नकल ऐसी है वो असल कैसे हो और कई बार तो सोचीदा है कि असी भी नकल ही तो नहीं असल तो बड़ी खास है असल तो अब्दाली ने नहीं देखी अजे दुनिया ने भी कोई नहीं देखी असल खालसा कितने कितने टावा टावा अपना रूप लेके बैठा गुरु कलगीधर पातशाह की रहनी बहनी लेके बैठा ते नकल नूं इन्ना मान सरदार जी कह के बुलाउंदे ने आदर करदे ने मान देंदे ने माफ करना जी अंदरों जीवन कोई नहीं मेरे वर्गा बंदा जे अंदरों जीवन लैके नहीं बैठा तो नकल ही है मराशी की नकल नूं नकल कहता मैनू कहिंदा कोई नहीं इन्ना फर्क है पर जे अंदर जीवन नहीं हैगा जे अंदर जीवन होवे ते पता नहीं किनियां वडियाईयां साडे कदम चुम्मण पैर पैर ते साडी फतेह होवे जीवन सुखां नाल भरिया होया वडियाईयां नाल भरिया होया शाबसां नाल भरिया होया मान सत्कार नाल भरिया होया निहाल निहाल जीवन होवे और तुसीं तां हर वेले जिस वेले परस्पर मिलदे हो फतेह गजाउंदे हो सवेरे शाम अरदासियां तो बाद जकारे गजाउंदे हो इन्हां रस्मन रूटीन विच गजाईयां होईयां फतेह ते गजाए हुए जकारियां दे बदले भी सानू बड़ियां कामयाबियां ते बड़ियां बरकतां प्राप्त ते जिस वेले अंदरों किसे सिख दी होए आवाज उठदी है हर पैर सफलता उहदे कदम चुकदी बल्कि साहिबां ने तां सानू इह वडियाईयां बख्श कीतियां ही ऐसियां ने असीं जकारा गजाउंदे आ महाराज सच्चे पातशाह ने वचन कीता सी सिख नाल सिख जिहड़ा फतेह गजाएगा पहला फतेह गजाएगा मैं उहदे वल मूंह करके उहदी फतेह प्रवान करांगा असीं फतेह गजाउणे आ ते साहिब कलगीधर पातशाह हाजर हुंदे ते सतगुरु हाजर होणगे बल्कि महापुरुष दा ऐसा भी कहिंदे ने कि अरदास करन लगे आ जिस वेले असीं प्रथम भगौती सिमर कहे गुरु नानक लई तिहाए कहिंदे आ ते दसे पातशाहियां साडे नाल साडी पिठ ते आ के खलो जांदे उन्हां दा जोर उन्हां दी शक्ति।

अकाल मूरत अजूनी सहंगुर प्रसाद जप आप सच युगा सच है भी सच नानक कोशी भी सच चक्र के नर्वण जात हर पात नहन जैन रूप रंग हरी पी कुन सत्य है अचल मूर्तन भव प्रकाश अमित तुज कह जय इंद्र इंद्रान शाहो शाहान गणेश फिर भ्रमण में ही सुर नारासुर नीत नीत मंडन कह तब सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण समत सतपुरे आयु शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी और न सूझ दूजी ठार आर पर तो द्वारी लिखा छोड़िया लिखा छूट है हम निर्गुण ले हो बारी सर्वक्षण सदा मेरवाना सबना भी आदारी नानक दास संत पाछा परियू राख लियू ए बारी सतगुर हुई दया

अपने परत करें प्रद बाला अदरा तेरी हड़याई नित नानक नाम तिहाई अदरा तेरी हड़याई नित नानक नाम तिहाई।